0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया, फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अबे तू है कौन, तू ये बता।
3: कहना ऐसे, ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो थोड़े मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉक्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है. अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन.

है दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल दिखा। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
2: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रोल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो.

0: ऑफ द फिल्म फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeetu Raj, only on Mirchi, it's hot.

पढ़ती है वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Liverpool Wild.

छोटी हो या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saath Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन.

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर देखा. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: Ladies and gentlemen.

या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्च इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

Welcome back, people. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ on Club Mirchi.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर

0: Richie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची।

0: work out.
1: आज का मूड ड्रेस्ड अप टर्न्ड अप एंड टोटली ट्यून्ड इनटू क्लब मिर्ची राइट डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योदिका आपके साथ
2: लाइक द लेजेंड ऑफ द फिनिक्स.

बड़ी साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योर दिगा ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल दिगा। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bioscope. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

छोटी हो या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो

जहां सेलिब्रेशन हो वहां क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची. और

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi Bios Gold. Saad Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज। हमारे टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,

इट्स क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga. Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
1: सर?
2: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट। कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
1: आसपास कोई भी नहीं है।
2: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
1: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
2: ठीक है
1: बताइए। हरा काट के देख।
2: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ। तो
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर

0: रॉकस्टार फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉकस्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: एक नया हफ्ता एक नया मिर्ची टॉप 20 और जैसे हर हफ्ते होता है अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे कहानियां सुनेंगे कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है और शुरुआत कर रहे हैं विद तुमियो बंदू 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ फ्रॉम द मूवी 1। दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माई गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये परसेप्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में। मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर, बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: शायद इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? लेवल का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अबे तू है कौन? तू ये बता
3: ना इसे। ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गाँव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16।

ये आवारापन, अरिजीत सिंह की आवाज में नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सच नहीं जमाना लगे, धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब यह आवारापन, जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

इन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज।

इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की आवाज के रूप में सुना है, लेकिन अब वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था। फिर ले आया दिल। प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे, अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं। आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है। 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल। मजबूर क्या कीजिए।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे, और यही प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं हैराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 12।

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स आप बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में एक ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1, नंबर 11 पर, इसे समझो ना। नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 10।

आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई ऐसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं

0: बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो, आप मुझे मोहब्बत दे दो, जस्ट डोंट गिव मी इररेलेवेंस। आई डोंट वांट टू बी इररेलेवेंट, आई ऑलवेज वांट टू बी रेलेवेंट। आई डोंट माइंड योर हेट एज लॉन्ग एज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, नफरत छिड़क छिड़क दो, मोहब्बत छिड़क दो, बस डोंट इग्नोर मी। बिल्कुल मुझे फेलियर का खौफ नहीं है। अगर आप मैंने फ्लॉप फिल्म बनाई है, स्टिल यू मस्ट टॉक अबाउट, ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो। बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट, क्योंकि इररेलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप मैं इतना इररेलेवेंट हूं कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माय शॉर्ट ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स और माय फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट इन दैट।
0: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 9।
2: नंबर 9।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

0: रामायण दिवाली पर आ रही है और साल के आखिर में 3 साल का एक और इंतजार खत्म होने वाला है, पठान जवान एंड डनकी ऑल इन 2023 एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद किंग। सिनेमा वैसे बदल गया है, शाहरुख खान भी बदल गए हैं। अब वो स्क्रीन पर मोहब्बत का इजहार करने से पहले दुनिया से लड़ते हैं, हाथ में बंदूक होती है, आंखों में गुस्सा और हर कदम के साथ एक नया एक्शन अवतार। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आता है और एक पल के लिए सारी आवाजें खामोश हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं। चाहे शाहरुख खान कितनी भी एक्शन फिल्म्स कर लें, चाहे कितने भी पंचेस मार लें, कितनी भी बार दुनिया को बचा लें, उस चेहरे को देखते ही हम किसी और ही वक्त में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब शाहरुख के हाथ में बंदूक नहीं एक गुलाब होता था, जब उनकी आंखों में बदले की आग नहीं इंतजार की नमी होती थी, जब वो दुनिया से लड़ते नहीं थे सिर्फ एक दिल जीतने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते थे। DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, हर फिल्म में शाहरुख खान का एक नया रंग था। हमने वो फिल्म्स पीछे छोड़ दी हैं, शाहरुख खान ने भी पीछे छोड़ दी हैं, लेकिन हमारा दिल वो अब भी वहीं अटका हुआ है। आज जब वो स्क्रीन पर किसी विलन को गिराते हैं तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जब वो बस मुस्कुराते हैं या आंखों से कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर का वो पुराना सिनेमा जाग उठता है। एक्शन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्म्स की याद अब भी जिंदा है, एक पुरानी तस्वीर की तरह जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती है मगर कभी मिटती नहीं। शायद इसलिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया जैसा गाना एक गाना नहीं है, वो एक दरवाजा है टू दैट एरा वेयर शाहरुख खान वाज द किंग ऑफ रोमांस, जहां बारिश अब भी हो रही है, जहां कोई ट्रेन अभी छूटी नहीं है, जहां एक लड़का अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और उस वक्त की एक धुन हमें फिर से सुनाई देती है, कभी खुशी कभी गम, संदेश शांडिल्या, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, सूरज हुआ मध्यम,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: हेलो
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन सा काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: पीछे हो गया सर।
3: फिर कटेगा कैसे?
2: भारी सामान
3: तो नहीं है सर।
2: रंग बता।
3: एक लाल एक हरा।
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर। लेकिन सिचुएशन है। आस पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
2: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए। आस पास के लोगों को सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: हरा काट के देख।
3: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर। ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा है।
3: हाँ।
2: तो मैं इसे को पूछा फिर तूने?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ये पटाक
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब सूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार मजा आ रहा है, कुछ अलग आवाज है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का उक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
5: Number 2.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैं अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ढंग मेरा, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय,
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, पर एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती, लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी, उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया, एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉप 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, poscabana, sacabana. Cabana. Murga, murga. La virtua la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
1: मेरा पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है करके
2: जा, मैं निकलवा लूंगा। ठीक है और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: देखो ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Radio Mitchie, New York. It's hot. It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: हेलो।
1: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
0: हेलो
1: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
0: मैं
1: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
0: तुम कौन हो?
1: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
0: क्यों आ जाऊं?
1: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
0: तुम्हें बात करनी है?
1: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
0: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
1: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
0: अरे किसका अंकल?
1: बेटा तुम्हारा अंकल।
0: ये कब आ गया?
1: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
0: हेलो
1: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
0: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
1: वही लेवल 7।
0: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
1: अग्रेशन।
0: कौन हो तुम मेरे?
1: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
0: अरे तू है कौन, तू ये बता।
1: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
0: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
1: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना फिर।
0: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
1: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La viva la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी हैं मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटू सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट।
3: कैंची ले ली सर।
4: लेकिन सिचुएशन है।
3: आसपास
4: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
3: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल
3: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
4: ठीक है।
3: हरा काट के देख धीरे से।
4: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशन।
3: ताली बज रही है? कौन है?
4: ये ताली बजा रहे हैं सर। ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा है।
4: हाँ।
3: मैं इसी को पूछा फिर तूने?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vjet vala burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Lab se bol rahe hain aap? लैब?
1: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ, थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: नहीं, ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
1: मेरा क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर जहाँ करनी कर
2: देगा। मतलब आप नहीं दे रहे मेरा
1: यूनियन? मैं नहीं दे रहा, तुझे जहाँ
2: ठीक है मैं निकलवा लूंगा, ठीक है। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है,
2: मैं देखता हूँ मेरा यूनियन कैसे।
1: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले,
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव प्लीज।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: हेलो
1: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
0: सर?
1: एक लाल है, एक हरा है, कौन सा काटूं सर?
0: टाइम कितना है
1: सर? डेढ़ से दो मिनट।
0: भारी सामान
1: तो नहीं है सर।
0: रंग बता।
1: एक लाल, एक हरा।
0: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
1: एक सेकंड, कैंची ले ली सर।
0: रुकिए, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं यार, सोच रहे थे, बहुत इमीजिएट
1: तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है।
0: जी जी जी, मैं सोच रहा हूँ, आसपास कोई भी नहीं है।
1: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
0: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
1: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल,
0: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
1: ठीक है, बताइए।
0: हरा काट के देख। धीरे से।
1: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
0: ताली बज रही है, कौन है?
1: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
0: शोरूम का रिबन काट रहा है।
1: हाँ,
0: तो को पूछा फिर तूने?
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
2: हेलो हेलो, मिर्ची सुन रहे हैं आप। अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, कोई बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है हमारा 90s एंड 2000s का इंडी पॉप क्लासिक हम फीचर करने वाले हैं, ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। 18 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार, संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है तारे, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabiyat wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको? क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये? पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों मैं तुम्हारे पास? कौन हो तुम?
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
3: अरे तू है कौन, तू ये बता।
4: ना ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल दे अपनी गांव में, ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बंजारी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है बैरन। 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। हर साल अक्टूबर आता है तो ये फीलिंग आती है ये 10 महीने कहाँ निकल गए। रिसेंटली मैंने एक गाना सुना एंड आई रियलाइज कि 10 साल कहाँ निकल गए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. The show is all about the hottest pop music of the week. But recently, ek gaane ne mujhe ekdam surprise kar diya when I realized ki is gaane ko, listen to this song, isko 10 saal ho gaye hain. Mere yaar, mera pyaar hai jahan hai, ye nikke nikke shots. गाने का नाम है बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह। 10 साल, यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ इस गाने पर डांस कर रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसको 10 साल हो गए, आई वाज लाइक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज ट्रू। 10 साल पहले अर्जुन कानूंगो अपने करियर में जो स्टार्ट कर रहे थे एंड टू गेट एन बादशाह कोलैब वाज सच अ ग्रेट डील फॉर हिम एंड इसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। बाय 2016 बादशाह वाज बादशाह, ठीक है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड रैपर, बट अर्जुन वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट तो ही वांटेड बादशाह टू कोलैबोरेट ऑन दिस सॉन्ग। अर्जुन ने ऐसे ही चांस लिया, बादशाह को ईमेल लिखा दैट मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई वुड लव फॉर यू टू रैप ऑन इट। एक दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरे दिन सीधा अटैचमेंट में एक रैप आता है। बादशाह ने ना कोई मीटिंग करी ना कोई स्टूडियो सेशन, उस अटैचमेंट में जो रैप का पार्ट था वही आज इस गाने में है। ये दोनों पहली बार मिले भी इस गाने के वीडियो शूट पर थे एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लेटर दिस सॉन्ग इज स्टिल अ टॉप पार्टी प्लेलिस्ट फेवरेट। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Throwback to 2016, this is Baki Baate Peene Baad by Arjun Kanungo and Bacha, only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika, enjoy. Rati.

0: हर थोड़े वक्त के बाद मैं यही बोलती रहती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट. दैट वाज अर्जुन गानोंगो बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज अ साई अभ्यंकर सॉन्ग, विवेक के लिरिक्स, गाने का नाम है राधी माँ, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद मिट्टा रौर का गाना 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है Kanika. Enjoy.
1: Number 5.

0: Craziest collab of 2026, Shreya Ghoshal ka gana. Arjun KDS 54, Ron ka gana featuring Shreya Ghoshal. That is Kalyani this week on Gana number 4.
1: Gana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi
0: Bear, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram for jao. Mera handle is at RJ Kanika. It's time for what we call हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग यू फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो.
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है परी हूँ मैं. 1991 में रिलीज हुआ था. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, राजेश जौहरी के लिरिक्स. सुनीता राव की एल्बम धुआं का था गाना. एंड आई नो बहुत लोगों को शॉक लगा होगा कि ये 1991 में आया था, पर तब से लेके अब तक इस गाने ने बहुत सारी जनरेशन की लड़कियों को ना एक अलग तरह का स्पेशल फील करवाया है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी ये गाना बजता था और मैं सीधा शीशे के सामने भागती थी, खुद को देखती थी, थोड़ा इतराती थी, तो डांस करो, थोड़े बाल बनाओ, मतलब फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाइब. एंड आज नवरात्रि एंड गरबा का सबसे हिट गाना है ये. परी हूँ मैं हर तरफ सुनाई देता है, गरबा नाइट, डांडिया प्लेलिस्ट, बिकॉज इट मेक्स एवरी गर्ल हैव दैट मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज मैं मस्त लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आई एम माई ओन सेंटर. एंड आई होप ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एवरी टाइम. बट इस गाने को सुनते हुए तो डेफिनेटली हम ये फील करने वाले हैं. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है परी हूँ मैं ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: सुनी तो रहोगी आवाज में, दैट वॉज परी हूँ मैं। बचपन नहीं, अभी भी मैं बस इतरा रही थी, खुद को देख रही थी, बाल बना रही थी, शर्मा रही थी। दिस सॉन्ग मेक्स यू फील सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सुनीता राव फॉर दिस आइकॉनिक आइकॉनिक सॉन्ग। एट आरजे कनिंग ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी गाना फ्रॉम द 90s 2000s जो आज भी आपके लिए एक आइकॉनिक गाना है, मुझसे और अशकाय के साथ आके शेयर करो। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। कृष्णा धनधनियोली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका। चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बूम शाका इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 3.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot Mirchi Bioscope Saath Jeetu Raj Only on Mirchi It's Hot
1: And Ajay Devgan ke career ki sabse badi opening wali film lag gayi hai jiska naam hai Drishyam 3 Now for people jinhone Drishyam is series ko follow nahi kiya hai Jeetu Raj as a film review person kahega ki Drishyam 1 ek cult thi Drishyam 2 okey dokey thi ab it was a powerful film but Drishyam 3 dekhne ke baad aisa lagta hai ki ab Drishyam jo hai wo classic genre mein aa jani chahiye Ajay Devgan rocks so for people who follow ticket khidkiyon ka reports internationally Ajay Devgan ki filmon ko itni achhi nahi milti opening jitni Khans ki filmon ko milti hai ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन विजय साळगावकर क्या करता है फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ उनकी तारीफ करनी ही बनती है डायरेक्टर अभिषेक पाठक वन मोर एस अप योर स्लीव प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ अजू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1, दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माय गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये परसेप्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? इफ आई एम पुटिंग माई हार्ट एंड सोल इन अ फिल्म, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया अगर, तो आप लिखेंगे उसके बारे में। मैं आपको बोलूँ नहीं आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू। आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट मी।
0: शायद इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: नंबर 17।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
1: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: है तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
2: मैं निकलवा लूंगा। ठीक है और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है जाके
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई।
1: हाँ ठीक है।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: ये पगला
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 16।

ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में, नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सजनी, जमाना लगे, धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब ये आवारापन। जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज।

इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की आवाज के रूप में सुना है, लेकिन अब वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था। फिर ले आया दिल, प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे, अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं, आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है, 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए।

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे, और यहीं प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 12।

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स आप बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

0: नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1, नंबर 11 पर, इसे समझो ना।
1: नंबर 11।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीत राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रोल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन।

0: 5 मिर्चीज के साथ अज्जू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10.

0: आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई ऐसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो, आप मुझे मोहब्बत दे दो, जस्ट डोंट गिव मी इररेलेवेंस। आई डोंट वांट टू बी इररेलेवेंट, आई ऑलवेज वांट टू बी रेलेवेंट। आई डोंट माइंड योर हेट, एज लॉन्ग एज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। नफरत छिड़क छिड़क दो, मोहब्बत छिड़क दो, बस डोंट इग्नोर मी। बिल्कुल मुझे फेलियर का खौफ नहीं है। अगर आप मैंने फ्लॉप फिल्म बनाई है, स्टिल यू मस्ट टॉक अबाउट, ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो, बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि इररेलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप, मैं इतना इररेलेवेंट हूँ कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माई शॉर्ट ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स और माई फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट इन दैट।
0: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन, and it debuts on number 9.
2: Number 9. Good.

0: रामायण दिवाली पर आ रही है और साल के आखिर में 3 साल का एक और इंतजार खत्म होने वाला है, पठान जवान एंड डनकी ऑल इन 2023 एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद किंग। सिनेमा वैसे बदल गया है, शाहरुख खान भी बदल गए हैं। अब वो स्क्रीन पर मोहब्बत का इजहार करने से पहले दुनिया से लड़ते हैं, हाथ में बंदूक होती है, आंखों में गुस्सा और हर कदम के साथ एक नया एक्शन अवतार। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आता है और एक पल के लिए सारी आवाजें खामोश हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं। चाहे शाहरुख खान कितनी भी एक्शन फिल्म्स कर लें, चाहे कितने भी पंचेस मार लें, कितनी भी बार दुनिया को बचा लें, उस चेहरे को देखते ही हम किसी और ही वक्त में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब शाहरुख के हाथ में बंदूक नहीं एक गुलाब होता था, जब उनकी आंखों में बदले की आग नहीं इंतजार की नमी होती थी, जब वो दुनिया से लड़ते नहीं थे सिर्फ एक दिल जीतने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते थे। DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल होना हो, वीर जारा, हर फिल्म में शाहरुख खान का एक नया रंग था। हमने वो फिल्म्स पीछे छोड़ दी हैं, शाहरुख खान ने भी पीछे छोड़ दी हैं, लेकिन हमारा दिल वो अब भी वहीं अटका हुआ है। आज जब वो स्क्रीन पर किसी विलन को गिराते हैं तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जब वो बस मुस्कुराते हैं या आंखों से कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर का वो पुराना सिनेमा जाग उठता है। एक्शन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्म्स की याद अब भी जिंदा है, एक पुरानी तस्वीर की तरह जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती है मगर कभी मिटती नहीं। शायद इसलिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया जैसा गाना एक गाना नहीं है, वो एक दरवाजा है टू दैट एरा वेयर शाहरुख खान वाज द किंग ऑफ रोमांस, जहां बारिश अब भी हो रही है, जहां कोई ट्रेन अभी छूटी नहीं है, जहां एक लड़का अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और उस वक्त की एक धुन हमें फिर से सुनाई देती है, कभी खुशी कभी गम, संदेश शांडिल्या, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, सूरज हुआ मध्यम,
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
3: Hello.
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है
3: सर?
4: एक लाल एक हरा, कौन से काटू सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट. पीछे हो गया सर, पीछे हो गया. फिर कटेगा कैसे?
3: अगर भारी सामान है,
4: भारी सामान तो नहीं है सर.
3: रंग बता.
4: एक लाल एक हरा.
3: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
4: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. इमीडिएट तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है.
3: आसपास कोई भी नहीं है.
4: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है. हिल नहीं रहे.
3: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
4: बिल्कुल.
3: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
4: ठीक है.
3: हरा काट के देख. धीरे से.
4: वन टू Congratulations.
3: ताली बज रही है. कौन है
4: ये ताली बजा रहे हैं सर? ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें. ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा है.
4: हाँ.
3: तो मैं इसी को पूछा है फिर तूने?
1: Mirchi Murga, Naveed ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Yeah, paga.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
5: Number 5.
2: Bob

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिससे गवा लो फिर सिंगर कोई बड़ा गा, और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार ये मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का उक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
3: Number 2.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान मेरा, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
2: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: याद भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं, तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया, उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया, उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं, अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया, एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉक 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।